संगरियन पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं से

पारा जब करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सृहत सब तार आप अपनी बूझ उचारै।

चौपाई संबद सतरह सहस पनिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय पाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्यान तिरे चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा।

संग हरु प्रथम तरह भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विदनाना कृष्ण जथा मत चरित्री उचारो चूक हो कबले हो सुधारो का बाज दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहो जग माहे जो तेह प्रभ को त्याय है अंत सुर्ग को जाहे दोहरा

महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किदे रव सास क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाख तनेत सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो है कथा सुने अर गावे दुख पाप तेह निकट न आवे।

प्रथम सुख दावण त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लहु लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तों के चरण तार सतद्रव तीरत रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग दोहरा।

सदार रंगीला लाल प्यारा एहो महिंजा आसरा सज्जन तू है सैन तू मैं तुझे ऊपर बहुमानिया

सिमरत नाम सगल रोग खया। सारे दुखां दा दारू परमात्मा दा नाम है, ओदी बंदगी है, ओदी भगती है,

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करन उन दे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दे हजूर उदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनु के दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुखासन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भलचुग की खिमा बख्शन आप जिया के भाने में दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया है। आई रहन आप दे भाने में बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनिया सेजा ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।

सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सबे बल सदा सुख मन बसै दुख संसार खोवे गुर नौनद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए दर्शन परसी है गुरु के जन्म मरण दुख जाहे वाहे गुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही शांत महला पहला कर चौथा

चंदो दिपाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी ऐ लिया। विवाह होआ सोब सेती पंच शब्दी आया। जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े।

जे होए भूला जाए कहिए, आप करता क्यों भुले। सुने देखे बाज कहिए, दान दान अण मंगया दिवे।

के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सतनाम वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानके वै जानिए सब आपे सचार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन से व्या तिन पाया मान नान गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हस कर ल जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहा समाई

एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा अमिन पाने के नाई करे जे तिस रिट्यो पाई वे कामिन कर्मा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चल सब कोय चंगा नाव रखाई कै जस किरे जगले।

नहीं सुमारे तौल तरम दया का पुत संतोषा ब्रखिया जनसूत जेको बुद्धिया हुए सचियार तवले ऊपर के तपार तरती होर परा होर तिस्ते पार तला कमन जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखा किता होए किता तान सवाल रू के तिदा जाने कौन कूत किता बसावे को कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख ता पताओ असंख रन मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम पाख सार असंख मोल विलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुत पावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंग मूर्ख अंधकोर असंग चोर हराम खोर असंग कमर कर जाहे जोर असंग गलवड़ त्या कमा है असंग पापी पाप कर जाहे असंग कुड़ियार कुड़े फिरा है असंग कमले चमाल पाख खा है असंग निंदेश करा है पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा

अमल गुण अमल व्यापार अमल व्यापारी अमल भंडार अमल आभ अमल जाहे अमल पाय अमल समाहे अमल तरम अमल दीवान अमल तल अमल परवान अमल बख्शीस अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमल अमल आख्या न जाए आख्या ग्रह लिवलाये आख्या वेद पाठ पुराण आख्या पढ़ा कर बख्याण आख्या ब्रह्म आख्या इंद आख्या गोपी तै गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख कित गीत बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव कित आख है आखण पाहे कित कह कह उठ उठ जाहे इत कित होर करे चाहे आखन सके के ही के देवड़ पावे तेवड़ होए नानी जाने साचा सोए जेको आख बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के जित वै सर्व संभाले वाजे नादन एक संखा किते वा बनहारे किते राग परी स्यो कहियन किते गा बनहारे गावे तो नु पौन पाणी वै सुंदर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त रे जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवे सोहन सदा सुवारे गावे इंदन दस बैठे देवत्या अंदर नाले गावे सत समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सो जुग जुग वेदा नाले गाव है मोड़िया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अड़सर तीर्थ नाले गाव है जोत महाबल सूरा गाव है खाणी चारे गाव है खंड मंडल व पंडा कर कर रखे तारे सही तुजन गावे जो तुत पावन रते तेरे भगत रसाले होर कित गावन से मैं चितन आवन नाने क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी हो सी जाय नंदासी रचना जिन रचाई रंगे रंगे भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या कीता अपना जिवत दी वड्याई जो तिस भावे सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पाठ साहब साह पद साहेब नानक रह रजाई मुंदा संतोख शरण पचोली ध्यान की करै प्रभूत खिंथा काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत आई पंथे सगल जमाती मन जीता है जग जीत आदित से आदेश आद नील नाद नाह जुग जुगे कोवेश भगत ज्ञान दया पंडार निकल करवा जय नाद आप नाथ नाथ सब जाके रे सदे

माल मनसोर जोर न सुरते ज्ञान विचार जोर न जुगते छुटा संसार जैसा जोर कर वेखा सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रुति तिवार पुण पणि अग्नि पाताल तिस्वे

भवनासम मुनमन प्रकाशम गुणगण प्रणाम जल थल मदाम अंश अंग आसनु भंग उपमा पार गतमित धार जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेंत अनुभव नास दे तरस जान बाहो

त्रित के धरण है, जग के करण है, मन मानिए है, जग जानिए है, सर्व पर है, सर्व कर है, सर्व सर्ववासी है, सर्वनाशी है, कर्णाक रहे, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, कल खंड से है, परते पर है, करना कर है, जपा जपे थपा थपे, अकृत कृत है, अमृत अमृत है, अमृत अमृत है, कर्ण कृत है, आकृत कृत है, तरण

पारी पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर हरीन मरोर वसन माते मदंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जान निदान चलेंगे वीर पार बडे बरियार विचार सार की दार पशैया तोरत देश मलिंद वसन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरन हार

अभ्यास करेंगे। कोट स्नान गजात गदान एक सो अम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म है सर विष्ण सची पद अंत फसे जम फास भरेंगे। जे नर श्री पद के परस भक्त नर फेर न दे तरेंगे। कहां पे हो जो तो लोचन मूंद के बैठ रहे हो। भक्त हन लगायो नाथ प्रियो लिये सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गुआयो वास कियो विख्यान सो बैठ के। ऐसे ऐसो वैस बतायो साच कहो सुन लियो सवै जन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो। काउ लान पूछते रहो सिर काउ नलिंगरे लटकायो। काउ लख्यार वाची दिशावे काउ पछाको शीश निभायो। को भूतान को पूजते हैं पस को मृतान को पूजन तायो।

उतरे सगल सुगरे दुखरो संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

ए बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम करे अपने चेरे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाओ

गुण जंज लाड़े नाल सोहै परख मोहनी ऐ लिया विवाह होआ सोव सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता अवरीता

जय। आप करे किसे आखिए होर करे ना कोई, आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई। जे होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुले, सुने देखे बाज कहिए दान अन मंगया दिवे। दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई।

सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी, हुक्म मनिया होवे प्रवान ता खसम का महल पाए सी, खसम पावे सो करे मन जिंदिया सो कर पाए सी।

देखते फते पंत की जी ठाकर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम्हार पिता

प्रथम राग भैरव वै करही, पंच राग नी संग उचरही। प्रथम भैर भी बिलावली, पुनिया की गाव है बंगली। पुन्य असले की पई वारी, ए भैरो की पंचो नारी। पंच महख हरख दिसाख सुनाव है, बंगाल माध माधव गाव है। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत, अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक आला पह, संग रागनी पंचो थापह।

माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग में बारा, प्रबल चंड कौशक ओवारा, खो खट्यो पौरा नद गाय, अष्ट माल कौशक संग लाई, पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत, उठ है तान कलोल गायन तार मिलावही, ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहिरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्र बिमंगलन सोहाय, सरस वानो आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा, अष्ट

जाने सोई किव करी आखा किव सलाही क्यों बरनी किव जाना नानके आखण सब को आख एक दो एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपू जाने अगै गया ना सोहै।

है जिस बख्शे सो जन पावहे कहे नानक सच सोहला सच्चाई कार गावहे आनंद।

अपने परिवार के सिर ते मेहर भरा परवा सुख शांति चढ़दी कला तारजा सफल बख्शिश करनी आ सुन परिवार नूं आप जी दे हजूर देख सज के हाजिर दर परवान है प्रसाद संघ वरताउण दी आगे बख्शवाई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा कीती दर कर विखे कीतियां सेवावां दर प्रवान करनियां परिवार सुख शांति चढ़दी कला दाता बख्शनियां। दो श्री खंड पाठ साहब जी की संपूर्णता जी की अरदास, एक सहज पाठ जी की संपूर्णता जी की अरदास, संपूर्ण जप जी साहब आनंद साहब जी की अरदास, भुल चुक माफ करनी सो बेनतियां गुरमसार प्रवान करदे हां बख्शो लाई श्री मुखवाक सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम जतावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

कोई जन कवन इहा जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बुझै ताकि निर्मल रीत। रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत, अर पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई।

वृषा मेरी तुम करो सख वार सख संगरो दुष्ट उठवादा सकल मलेश करो उनका जया तुम दसानी परे तिनके दुष दुख तुम मरे पुरख जीवन परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ध्याई है ताके काल निकने है रचा हो ऐसा काला दुष्ट रिष्ट काला कृपा दिस्तन जान हरे हो ताके तब तन कमा रहे हो रहते सिद्ध कर्मों सब हो।

0: इतनी सेवा प्रदान कर लीजिए, कीर्तन करते आप माफी बख्श नहीं। आओ गला प्रोग्राम सर्व करो जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी फतेह।
2: दीन दुनिया दे वाली, चवर तख्त दे मालिक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दरबार दियां हारियां पर गुरु खालसा जी, आओ फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐतवार दे शेष प्रोग्रामां दे विच आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन निहाल कर रहे सन साढ़े बड़े ही सत्कारयोग भाई गुरप्रीत सिंह जी ते उन्हां दा जत्था जत्थे दा बहुत बहुत धन्नवाद। इस तों उपरांत आप जी नूं गुरमत विचारां राहीं निहाल करनगे साढ़े बड़े ही सत्कारयोग भाई लखविंदर सिंह जी। उस तों उपरांत 12:15 दे करीब जो साढ़े गुरु घर दे प्रोजैक्ट चल रहे ने उन्हां बारे आप जी नूं अपडेट किया जाएगा। इस तरह ही 12:30 दे करीब ताई सुनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले, उस तो उपरांत 1:30 तो लैके 2:40 तक कथावाचक भाई अमरीक सिंह जी चमकौर साहब वाले आप संगतां दे दर्शन करनगे। एक दो जरूरी बेनतियां, साढ़े पास ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले 9 अक्तूबर तो लैके 14 अक्तूबर तक आप संगतां दे दर्शन करनगे। इस तरह ही जो इस कमिंग हफ्ते धन धन साहब श्री गुरु रामदास साहब जी के प्रकाश दिहाड़े आ रहे ने उस संबंध में 7 तरीक नूं शाम नूं अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग 9 तरीक नूं शाम नूं 4 बजे पैणगे। उस तो उपरांत 5 तों 6 बजे तक सिमरन होवेगा। नाल ही बेनती करा जो 21 नवंबर नूं खंडे वट की पौल का अमृत संचार का वाटा तैयार हो रहा है, सो आप सब ने जिस किसी ने भी अपने बच्चों नूं जां किसी ने भी अमृत दे वट की पौल प्राप्त करनी होवे आप लाइब्रेरी विच अपना नाम लिखवा सकते हो। एक दो होर जरूरी बेनतियां ने, आप अक्सर देखते हो जां गुरु घर आउंदे हो अपनियां गड्डियां देख के पार करिया करो, क्योंकि जो असीं गड्डी कढ़दे हाँ तां पिछे बैक करदे चैक नहीं करदे पिछों गड्डी होर भी आ रही है। बहुत केस आउंदे ने जिस विच दूजे परिवार नूं सफर करना पैंदा है जदों किसी की गड्डी हिट हो जाती है। अपना इमानदारी नाल उत्थे जे किसी तो गड्डी इस तरह हिट हो जाती है तां अपना इनफॉर्मेशन जरूर दे के जाओ, चाहे लाइब्रेरी च दे जाओ, चाहे जिहड़ी गड्डी तुसी हिट करदे हो तां उत्थे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छड के जाओ। नाल ही बेनती करा जो आप घरां विच्चों समान लिया के गुरु घर रखदे हो, बड़ा इतराजयोग हुंदा है जदों तुसी घरां विच्चों चीज़ लिया के कोई भी गुटका साहिब होवे ओह बाहर लिया के आपां उत्थे बाहर रख दिंदे आ। तुसी ठीक है जे कोई बहुत बिरद अवस्था दे विच है तां उस नूं लाइब्रेरी विच जमा करवाओ, उसी बेअदबी करके बाहर ना रख के जाओ। ये देखने विच आउंदा है कि तुसी कोई केयर नहीं करते, वह बाहर जो कार्ड पई है उत्थे गुटका साहब उहदे उपर पए हुंदे ने। प्लीज़ हथ बन के बेनती है कि इस तरह की बेअदबी कोई भी ना करे, क्योंकि यह बर्दाश्त योग गल्लां नहीं हैगियां। देखते हाँ कि गुटका साहब उत्थे पए ने जिन्हां नूं असीं बाणी पढ़ते हाँ, यह हथ बन के बेनती है। प्लीज़ नैक्सट टाइम जे किसी ने भी अपना बिरध अवस्था के गुटका साहब लैके आना है आप उन्होंने सरकार साहब लिया के लाइब्रेरी जमा करवा के जाओ। प्लीज़ सानू गांह वास्ते इस तरह मौका ना दो कि इस तो स्टेज तो अनाउंस करना पवे, क्योंकि यह गल्लां हर रोज़ बढ़ रही ने। नाल ही दूजी बेनती करा जो आप व्हीलचेयर तुसी बाहर देखते हो कि लॉबी दे विच पहला एक व्हीलचेयर होंदी सी, हुण उत्थे 5-6 व्हीलचेयर तुरियां फिरदियां जो कि बच्चे जां होर उन्हां नूं छेड़छाड़ करके उत्थों अपने आप नूं सट भी लवा सकदे ने। कोई भी व्हीलचेयर प्लीज़ गुरु घर ना डोनेट करो इस तरह दी चीज़ां। होर भी कई चीज़ां ने जिहड़ियां कि स्टेज तों अनाउंस करदे नूं शर्म आउंदी है, पर तुसीं आप ध्यान रखो भी इह सानूं गुरु घर शोभा नहीं दिंदे आ जो असीं इह गल्लां कर रहे हां। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करियो। आओ हुण साडे हाँ जी एक जरूरी बेनती होर, ठीक है मानते हाँ कि आपने प्रसाद इतों गिलास के पा के जे आप घर परिवार ले जाना चाहते हो तो उसका सत्कार सहित उसनों लैके जाओ। ये भी नोट किया जाता है कि प्रसाद गिलास में पा के जोड़ा घर के रख के असी भुल जाते हाँ जा अणगौलिया करके चले जाते हाँ। प्लीज़ ये दिनों दिन जो हालात ने साढ़े बिगड़ते जा रहे हैं, असी अपने आप को गुरु महाराज का भाव रख के ये गल्लां ना करिए। इनियां बेनतियां प्रवान करियो। आओ हुण साडे बड़े ही सत्कारयोग कथावाचक भाई लखविंदर सिंह जी पासों 12:15 बजे तक गुरमत विचारां सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे सम्रथ अगम पूरन, मोहे मया तार, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। सुकहु टल गुर सेवीय, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टी, तुद डिठे सच्ची पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहांदै शाह, जिस पास बैठिया सोही है,

पत ति उदारण पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानिया सदा बस्त तुम साथ।

मत दिन पी जाए, पावर गए बग बैठे आए। इन्हों पंक्तियों विच बहुत वड्डा रहस है। सतगुरां ने एग्जाम्पल दिते ने कि जिवें काली बोली रात बीत गई है, किते ऐसा ना होवे कि तेरा दिन भी बीत जाए। रात तो भाव है साड़ी जवानी, जदों साड़े वाल काले हुंदे ने, उस नूं सतगुरां ने रात मन के इंसान नूं जागृत किया है कि जिवें तेरी जवानी चली गई है, इवें किते ऐसा ना होवे चिट्टा दुध वर्गा दिन, भाव कि जिवें हुण वाल चिट्टे हो गए, काले हों फुन धौले आए, जिवें भावर गए बग बैठे आए। जिदा काले भावर, भाव के जवानी चली गई, काले वाल जड़े हुण सफेद हो गए, भावर गए बग बैठे आए। बगले चिट्टे हुंदे ने, भावर काले हुंदे ने, ते बगलियां दी न्याई भाव के हुण बुढ़ेपा आ गया, तेरे तौले आ गए, वाल तेरे चिट्टे हो गए, किते एवें ना होवे कि जिवें जवानी तेरी निकल गई है कार विहार करदियां, एवें तेरा किते बुढ़ेपा भी ना चला जाए। रात गई मत दिन पी जाए, किते ऐसा ना होवे कि ये समा भी तेरे हथों चला जाए। भवर गए भग बैठे आए, काचे करवै रहे ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। जिदा कच्चे घड़े विच कोई पानी रखण दा यतन करे, ओ लंबे समय तक टिकिया नहीं रह सकदा, हौली हौली सिम सिम के ओ खत्म हो जांदा, मुक जांदा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उदाहरणा दे के सानू समझाउणा कीता, प्यारिया समझ अजहों समझ, कछ बिगड़ियो नाहिन भजले राम मुरार। अजे भी समा है, कुछ भी बिगड़िया नहीं। जो सुवास तेरे चले गए ने, जो सुवास तेरी जिंदगी विच्चों मुक गए ने, ओ तेरे हाथ वापस नहीं आने। जो सुवास तेरे कोल बचे ने, उन्हां नूं सफलियां करन दा यतन कर, किते वह भी ना तेरे हथों चले जाण। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू वार वार समझाउंदे ने, प्यारिया अजहों समझ कछ बिगड़ियो नाहन, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। कहिंदे हुंदे ने ना डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। सो जिहड़ा समा तेरे कोल है, वह समय नूं संभाल लै। जिहड़ा निकल गया वह वापस नहीं मिलना, वह वापस आउणा ही नहीं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू समझाउणा करदे हन। सो काश किते सानू इन्हां पंक्तियां दी समझ लग जाए, ते असी जागृत अवस्था विच आ जाइए। जो असी लंबे समय तो गूढ़ी नींद सुते पए हाँ, सानू इत्थों जाना भुल गया है, असी समझदे हाँ असी सदी भी काल लई इत्थे ही रहना, साडा लम्मा रहण बसेरा है। नहीं प्यारिओ, हम आदमी हाँ एकदम मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिनवै तिसै सरेवो, जाके जी प्राणा अंधे जीवना बिचार, देख केते के दिना। ज्यादा समा तेरे कोल नहीं है। पहला आपां देखदे सां साडे बजुर्ग अक्सर ही 100 साल की उम्र भोग लिया करते सन, हुण तां कोई 60 तो बिरला बिरला ही उपर जांदा। सो साडा खाण पान उदां दा हो गया, साडे काम काज साडे हथों चले गए। मेहनती हुंदा सी बंदा, मशीनी युग आउण करके मेहनतां चलियां गईयां, हथीं काम काज करने छड्ड दित्ते, साडे शरीर निथले हो गए,
ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਆਖਦੇ। ਸੋ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਲਵਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਹੋਵਾਂਗੇ।